कव सिमरह तिन सुख बिहावे प्रभु कव सिमरह तिन आत्म जीता प्रभु कव सिमरह तिन निर्मल रीता प्रभु कव सिमरह तिन अंध कनेरे प्रभु कव सिमरह बसहे हर नेरे संत कृपा ते अणदन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभु कै सिमरन कबह न झूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन प्रभु कै सिमरन कमल बिंगासन प्रभु कै सिमरन अन

नहीं तरे। हर को नाम कोड पाव पर हरे, गुरमुख नाम जपहु मन मेरे, नानक पाव सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाह करोरी बंधन परे, हर का नाम जपत निस्तरे। अनक माया रंग देखना बुझावे, हर का नाम जपत आगावे। जिह मार्ग इह जाते अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याइये, नानक गुरुमुख परम गत पाइये।

भोजन सुख सूद बिरद पयाव प्रसाद सैन मुख्य प्याव बैठ कव दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बक्स लेहो तव नानक सीजै जेह प्रसाद धारु पर सुख बस है सुत प्रात मीत बंता संग हस है जेह प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव के अमुला जेह प्रसाद भोगे सब रसा सगल

होए। सर्व निदान प्रभु तेरी माया, आपो कछु न कनि हु लाया, जित जित लाभ तित लगे हर नाथ नान किन के कछु नाथ सरोक। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुगता होए, सुन मीता नानक बिरवंता साजन की अचरज कथा अष्टपदी। साध के संग मुख उजल होत, साध संग बल सगली खोत, साध के संग मेटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग विजय प्रभ नेरा, साध संग सब उतन बेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ मह समानी, साध के संग है अगोचर मिले, साध के संग सदा पर फुले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पंचा, साध संग हो सब की रेण, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कतहू तावे, साध संग अस्थित मन पावे, साध के संग माया ते पहन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सावी साधु कै संग महापुनीत, साध संग

मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिस का नाम सत राम दास राम तिस नदरिया दाव दसंत न पाए तन पाय सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगे प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी पर सगल संग आत्मे उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा तुम ही तावे जीवन मुक्त सो कहावे।

बहुविधि प्रकार अष्टपदी कई कोट होय पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट प्रतीर्थवासी कई कोट वन ब्रह्म उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी सर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है कई

घात मिने कोर, कई कोड़ पर दर्ब को हिर है, कई कोड़ पर दुख न कर है, कई कोड़ माया श्रम वाहे, कई कोड़ प्रदेश परमा है, जेत जेत लाभ तेत तेत लगना नानु करते की जान करता रचना।

मंडल, कई कोट ससियर सूरन खेत्र, कई कोट देव दानव इंदर सिर छत्र, सगल समगरी अपने सूत धारे, नानक

बहुलत कर बारो कुपुर करे आज पर पीतर ताका हो बिना सब ते आप जाने बलवंत खेन मह हो जाए पसमंत किसे ना बदे आप अहकारी धर्म राय तिस करे खुआरी।

आप सुमाया सोदत सोदत सोदत सीधिया गुरप्रसाद तत् सब बुझिया जब देखो तब सब के समूल नानक सो सुखम सोइया स्थूल नह कह जन्मे नह कह मरे आपन चलते आप ही करे आवन जावन दृष्टा दृष्टाग्रकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सगल मह आप अनक जुगत राच थाप अविना

सगल काढ़ सो है। तनवंता हुए के आग घर बह जा, सब किश तिसका दिया धर बह आत सूरा। जे को कहावे प्रभु की कला बिना कहतावे, जे को हुए बहता तार तिस देन हार जाने गवार। जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सो जन, सदा अरोग ज्यो मंदिर कथा में थमण। त्यो गुर का शब्द बने अस्तमण, ज्यो पाखान नाभ चढ़ तरे प्राणी। गुर चरण लगत निह तरे, ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश। गुर दर्शन देख मन होए विगास, ज्यो महाउदयान मह मार्ग पावे। त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे, तन संतन की बाछो तुहर नानक की। हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बेलाई, प्रभु लिखे का लिखिया पाई। दुख सुख प्रभु देव निहार, वर त्याग तू तिसे चितार।

नानक चौथे पाद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समान समाणी सत कर्म जाकी रजना सत मूल सत सत उत्पात सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बजाए तिसे सब भली सतनाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नान गुरते पाई सत भजन साधु उपदेश सत जन जा कै हृदय प्रवेश सत निरत बूझै जे कोय नाम जपत ताकी गत होय आप साधकिया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी श्रेष्ठ सो करने हार वरण बूझ गत विचार करते कि मित न जाने किया नानक ज्योत भाव है सुवृति या बिस्मण बिस्म भय बिस्माद जिन बुझया तसा स्वाद प्रभु के रंग राज रहे गुर कै भजन पदार्थ लय वे दाते दुख काटन हार जा के संग तरह संसार जन का सेवक सोवड भागी जन के संग एक लिवलागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आदि सच गुआ सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्न हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत ध्यावन हार

सुखर नाम का संग नाम रह जो जन तृप्ता ने मन तन नामे नाम समानी उठत बैठ सोत नाम कहो नानक जन कै सदकाम बोलो जह जे बंद रात प्रभ अपने जन की नी दाद करे भगत आत्म कै चाय प्रभ अपने स्यों रह समाए।

तार दिरास सेवा करत होए निहकामी तिस कहोत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा निसाब करे नानक सो सेव गुर की मातले।

पहरे पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म के आप नहीं कस परम सहस सियान पलया न जाइये नान कैसा गुर बड़ भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुन कर बचन करन आगाने मान संतोखा तुम पदियाने पूरा गुर ख्यो जा कमल तरे अमृत दृहित पेख हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिह भावे तिह लय मिलाए जिह भाए कुहत दनेक सतपुरख पूर्ण वेक काहु बोल न पाहु चित प्राणी अगम गोचर प्राव निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदानी ताकि कीमत कहना न पाई अनक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिमरे सत बलिहारी सतगुरिया प्रे नानक जिस प्रसाद प्रभ जपने एहो

चरण कमल रिद मिहर तारो करन कान सुप्रभ सुमिराथ देव कर गह नाम हरवत एहो तन संचो हो भगवंत समझना काने बरमंते काह राख मन माय सर्व रोग नानक मिट जाय जिह धन कौ चार कुंट उठतावे सो धन हर सेवा ते पावे जिह सो कौ नित बाछे मीत सो सुख साधु।

सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पही सतगुर ते निर्मल, मत लई जन को प्रभ होयो दयाल। सेवक की नो सदा निहाल, बंधन काट मुख जन पह जन मरण दुख प्रभ गया। इस पुन्नी सरदा सा पूरी राव रहया, सतसंग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाए। नानक भक्ति नाम समाये, सो क्यों बिसरे जे काल न पहने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने।

आओ। नेत्रो पेख दर्श सुख होए, मन बिग सहे साध चरण तो होए। भगत जना कै मन तर रंग बिरला को पावे संग। एक बसद दीजे करमाया गुर प्रसाद नाम जप लाया, ताकि उपमा कहीं न जाए। नानक रहया सर्व समाए, प्रभु बख्शान दीन दयाल। भगत बछड़ सदा कृपाल,

लावे मन हित। हम निर्गुणियार नीति अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्ब बैकुंठ मुक्त मोह पाए, एक निव करके गुण गाय अनक राग अनक राज। भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन

काप ही प्रजापति जब अकार हु कहना दृष्टे तब पाप पुण तब कहते होता जब धारिया अपन संभाव तब वैर विरोध के संक बाद जब इसका वर्ण तेह न जापत तब हरख सो कहो किसे बे

किस कहो गणी। जब एक कहे हर अग में अपार, तब नरक सुर कहो कौन उतार। जब निर्गुण प्रभु सहज सुपाय, तब शिव सगत कहो कित ठाए।

छिद्र लगत कव किस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसे भूख कवन त्रिपतावे करन करावन करने हार नान करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा अपने संग मनाई तब कवन माय बाव मित्र सुद भाई जह सर्व कला पे प्रवीण ते जह सर्व कला पे प्रवीण तह वेद देव कहा को चीन

जातमित कही न जाय दूसर होए न सो जी पाए तसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नान के हो जान जो जान तिस सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओह तनवंत गुणवंत पदवंत जीवन मुक्त जहृदय भगवंत

एक एक रूप जाके रंग अनेक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी काहे अधार।

सेवक की सेव आल जंजार बकार तरह ते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निभी फेब हमारी प्रभु की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज कबिंद गुण नाम जिस मन बसे सोधन दान सर्व इच्छा ता

बिंद आखें ईसरे आखें सिद्ध आखें किते केते किते बुद्ध आखें दानवे आखे देव आखें सुर नर मुन जन सेव केते आखे आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते किते होर करे ता आख न सकह केई के जेवड़ भावे तेवड़ हुए नानक जाने साचा सोए जेकू आखे बोल बिगाड़ ता लिखिया सिर गावारा गावार सो दर केहा सो कर गेहा जित बै सर्ब संभाले बाजे नाद अनेक असंखा केते बामण हारे केते राग परी स्यों कहियन केते गावण हारे गावे तूनु पौन पाणी बै संतर गावे राजा धर्म दुआरे गावे चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे इंद इंदासन बैठे देवत्यां दर नाले गावे सद समाधि अंदर गावन साध बिचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले गावन रतनो पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खाणी चारे गावे खंड मंडल बर भंडा कर कर रखे तारे सही तुदनु गावे जोत भावन रते तेरे भगत रसाले और केते गावन से मैं चेतना आमन नानक्या विचारे सोई सोई सदा साच साहेब साचा साची नाई है पी हो सी जाय ना जासी रचना जनर चाई रंगी रंगी भांति कर कर जनसी माया जनो पाई कर कर वेखै कीता आपना जेब तिस दी वड्याई ज्योत भावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह शाह पात साहेब नानक रहन रजाई मंदा संतोख सरंबत झूड़ी ध्यान की करे विभूत।

हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी, सेवकन को सेवकन सुख दियो, सत्रन को बल मोहबत कियो, घट घट के अंदर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते गुंजर सूला, सबर कृपा दुष्कर फूला।

महामूढ़ कशपेद ना जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न भव आप अपनी बुद है जेती बरनत भिन्न भिन्न दुए तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप सुरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंड जेर सेत जकीनी उदभुज खान बहो रजदीनी कहू फूल राजा हवे बैठा कहू सिमट भयो संकरे कैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभ व्याद जुगा स्वरूप से अम्भव अवृक्षा मेरी तुम करो असिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उदपाता सकल मलेश करो रणकाता जे आस तुज तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन भग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब ठारे जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है रक्षा वे ताए सब कला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाय रे हर हो ताके ताप तनक में हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब हो ये दुष्ट छा शबय सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल वास्ते ताहे उबारा जिन्नर नाम तिहारो गा दार दुष्ट दोख दे रहा खड़केत मैं शरण तिहारी आभा दैले उबारी सर्व ठावर मोहो सहाई दुष्ट दोखते लेहो बचाई कृपा करी हम बर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता केरवक सगल देह को हरता दुष्ट दोखिन को शय करता श्री अस्तुजा पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकला मन बांचत बल पावे सोई दुखना तसे बेआपत कोई अडल सुने गुंग जो जाहे सुरसना पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आबई दुख दर्द भवन गिना दिनर गेर है ओज जाकी एक बार चौपाई को क्या है चौपाई संबत सतरा सहस पणिज अर्थ सहस पुन तीन कह जाय भाद्र सुधी अष्टमी रवारा तीर्थ सदर्व ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते गु आंग तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सबै

गुर बाणी कह सेवक जन मान प्रतख गुरु ने सतारे। सतगुर बचन, बचन है सतगुर,

वह जो है अटल शब्द गुरु तन तन आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी पावन पवित्र जुड़ जुड़ बैठी साध संगत जी बड़भागी हो आप जी अमृत वेले तो ही गुरु साहिब दीवार दीवान दी हाजरी भर रहे हो अमृत वेले तो ही गुरु घर विखे संगता वालों संगती रूप च नाम जपया गया उपरंत गुरु पातशाह जी ने सोने तंगता दे विराज दर्शन दारे बख्शिश किते पितर हुकमनामे बख्शिश किते उपरंत गुरु महाराज की हजूरी च सुखमनी साहब जी दे पाठ पंजा बाणिया दे नितनेम होए हन गुरु पातशाह जी आप जी ने हुक्म सरण किए हैं हूँ श्री आसा की वार दे शब्द कीर्तन होंगे भाई भिंदर सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब जी वाले का कीर्तनी जथा आप जी ने कीर्तन सरवण करवाएंगे सात संगत जी मौजूदा संघर्ष दौरान अणगिणत ही कौमी शहीदा जिन्होंने लवारस कह के बेकदरी ना हर की पत हरी के पतन दे निरज पाने से रोड़ता गया उन्हें दिया चितावान दरिया हवा दिया लहर बनाई गई उन्हें समूह ही शहीदा याद करद्या होया उन्हें शहीदा की सिजदा करद्या होया उन्हें निमित समूह संगत रूप वालों अज अरदास समागम हो रहे हैं गुरुदसा फ्री मोड विखे शाम को 3 बजे तो लैके 6 बजे तक जिस सुखनी साहब जी के पाठ हो गए फिर कीर्तन हो गए 5:15 तो लैके 5:45 तक 5:45 उन्हें समूह शहीदा की याद में अरदास संगती रूप होगी आप जी ने समूह शहीद पाठ दौरान हाजरियां भर के अरदास हाजरे भर के उन्हें समूह शहीदा श्रद्धांजलि सिजदा करने वास्ते जरूर परिवारों सहित पहुँचना है जी। धन गुरु हरकृष्ण पहस पातशाह जी के प्रकाश दिहाड़े भी आ रहे हैं इस हफ्ते ही संगत परिवार वालों हर साल की तरह फ्री मोड दंगत वालों श्री अखंड पाठ साहब शुक्रवार प्रारंभ होतवार संपूर्णता हो आप जी ने हाजने परनिया जी अखंड कीर्तन समागम जो कि सालाना हकार अखंड कीर्तन समागम आ रहे हैं अगले हफ्ते 23, 24, 25 नूं 23 वीरवार ट्रेसी विखे शाम दे अखंड कीर्तन होणगे 24 नूं शुक्रवार सवेरे शाम कीर्तन समागम फ्री मोड गुरुद्वारा साहब होंगे अते शनिचरवार नू सवेरे फिर कीर्तन समागम गुरुद्वारा ट्रेसी गुरु नानक प्रकाश विखे सवेर दे कीर्तन समागम हन अते उत्थे शनिचरवार 25 तरीक नू 25 जुलाई नू सवेरे 10 बजे अमृत संचार उत्थे होंगे जिन्हां प्राणियों ने परम गुरु वाले बनना है अपने नाम उत्थे लिखा सकते हो पंजा पैर दे पेश होके नाम दी दात मरदात प्राप्त करके जन्म सेला करो आउन श्री आसा की वार दे शब्द कीर्तन भाई भविंदर सिंह जी अजुरा की सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी वाला कीर्तन जथा आप जी कीर्तन जोड़न पासों प्यार सत्सरण करो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

बड़ी साहेब हो दयाल कृपा करते साई कर कराईसी सो सेवक सेवा करे जिसन हुकम बनाईसी हुकम न हो प्रमाण त कसम का मैल पाईसी कसम पावे सो करे मन तंदे सो फल पाईसी तादर गए पैदा जाईसी तादर गए पैदा।

और जित सेवे सुख पाए सो साहिब सदा संभालिए, जित कीता पाई अपना सा काल पुरी क्यों घालिए, मंदा मूल की चाहिए दिल में नजर निहालिए, ज्यो साहिब नाल हारिए ते वेहा पासा ढालिए, किस लाहे उपर घालिए किस लाहे उपर घालिए।

और नानक जी अपनी हरता के पारावार आप करे शक्ति विराप करे मार गली जंजीरें एक त्रिछड़े बिछियार आप करे करे आप हो कैसो करी पुकार नानक करना जिनके फिर तसे करनी सा।

द्वारि लेखा छोड़ अलेखा छुट है हम निर्गुण लेहो युवारी साध बक्सिंद सदा मेहरबाना सब नांदी अधारी नानक दास संत पाचै परियो राख लिहो एह बारी नानक दास संत पाचै परियो राख लिहो एह बारी वाहिगुरु जी टोडी महला पंजवा

महाराज जी कहंदे असी खोज खोज के तत् दी विचार कीती है कि जेड़े सेवक परमात्मा दे आसरे रहिंदे है, गोविंद परायण गोविंद दे आसरे हो जांदे है, सब आसरे छड़ दिंदे है। देखो जदों जिन्ना चिर बंदे कोल तंदरुस्ती ते पैसा हुंदा है उन्ना समा सब साक संबंधी ठीक रहिंदे है, ते रब ना करे कोई विपता पै जाए मुसीबत आ जाए सब तो पहले वह छड के भजदे है जिन्हां नूं बंदा अपने नजदीक समझदा सी। नजदीकी तो है ही नहीं सी, पैसे करके सी भी वधिया खांदा हड़ा हुंदा है

छाड़ दुविधा की कुरिया रहाओ निर्गुण हरिया सारगुण धरिया अनक कोठरिया भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न करिया बिच मन कोट वरिया निज मंदर प्रिया तहा आनद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया बहु विद फिरिया परको हिरिया बिखमन किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहुर न फिरिया सूही महला पंजवा रास मंडल कीनो आखारा सगलो साज रखियो पासारा रहाओ बहुविद रूप रंग अपारा पेखे खुशी भोग नहीं हारा सब रस लैद बस्त निरारा वर्ण चे नाही मुख ना मसारा कह न जाई खेल तुहारा नानक कृपा कह न जाई खेल तुहारा नानक रेण संत चरनारा सुही महला पंजमा तौ मैं आया सरनी आया भरोसै आया कृपा आया जो पावै तो राखो स्वामी मार गुरे पठाया रहाओ महा दुत्र माया जैसे पवन चुलाया सुन सुन ही डराया करो धर्म राया ग्रह अंध कूप आया पावक सगराया गही ऊट साध आया नानक हर त्यारा अब मैं पूरा पाया राग सुही महला पंजवा कर छीवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास बिनंतिया मिले नाम अधारा तुठा सच्चा पात साह ताप गया संसारा भगतां की टेक तू संतां की ओट तू सच्चा सिरजनहारा रहाओ सच तेरी साह मगरी सच तेरा दरबारा सच तेरी खा जीनिया सच तेरा पा सारा तेरा रूप अगम है अनूप तेरा दरसारा हाओ कुरबाणी तेरिया सेवका जिन हर नाम प्यारा सबे इच्छा पूरिया जा पाया गम अपारा गुर नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरे चरना कौ बलिहारा राग सुही महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा भाणा तू है मना है जिसनो होहे दयाला साई भगत जो तुद भावै तू सर्ब जिया प्रतिपाला मेरे राम राय संतां टेक तुम्हारी जो तुद भावै सुप्रवान मन तन तू है अधारी रहाओ तू दयाल कृपाल कृपा निद मनसा पूरन हारा भगत तेरे सब प्राण प्रत प्रीतम तू भगतन का प्यारा तू अथाह अपार अत ऊचा कोई अवर न तेरी पात है एह अरदास मारी स्वामी बिसर नाही सुख दाते दिन रैन सा सास गुण गावा जी स्वामी तुद भावा नाम तेरा सुख नानक मांगै साहिब तुठे पावा सुही महला पंजवा विसरे नाही जित तू कबहू सो थान तीरा किया आठ पैर जित तुद त्याई निर्मल होवे देहा मेरे राम हो सो थान पालन आया खोजत खोजत पया साध संग तिन सरण आई पाया रहाओ बीद पड़े पर ब्रह्मे हारे एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिरे बिललाते ते भी मोहे माई दस अवतार राजे होए वरते महादेव अवतूता तिन पी अंत न पायो तीरा लाई थके बेपूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया सुही महला पंजमा कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जा गाती लूटै निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख सिमरत जित छूटै संतो सागर पार उतरिए जी को वचन कमावै संतन का सो गुरु प्रसादी तरिए रहाओ कोट तीर्थ मज्जन इस नाना इस कल मैं मैल परीजै साध संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर लीजै बीद कतीब सिमरत सब शास्त्र इन पढ़िया मुक्त न होई एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद बैस
उपदेश चौं बरना को सांझा गुरमुख नाम जपै उदरे सो।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु हे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। उठ गई सवा मलेश की कर कूड़ा पसार, डंका बजे फतेह का निलंकार अवतार। नानक गुरु गोबिंद सिंह पूरन गुरु अवतार, जगमग ज्योत बराजी अब चल लगन बाजार। श्री सचखंड के दरबार, श्री सचखंड के दरबार, सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार। बाहें गह की लाज यार, गोविंदास तुहार। दीन दर्द दुख पंजना, कट कर नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रावधान। श्लोक महला।

तरस पिया मैं रहमत हो सतगुर सज्जन मेले नानक नाम मिले ता जी तन मन थीवे हरे नानक नाम मिले ता जी तन मन थीवे हरे सोठ महला पंजवा हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर स्याणे तू सर्व कला का ज्ञाता हम मूर्ख तुम चतुर स्याण सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंड निको ठाकर देसा हम पापी तुम पाप खंड निको ठाकर देसा रहा तुम सब साजे साज नवाज जियो पिंड दे प्राणा तुम सब साजे साज नवाज जियो पिंड दे प्राणा निर्गुण आरे गुण नहीं कोई तुम दान दियो मेहरवाना निर्गुण आरे गुण नहीं कोई तुम दान दियो मेहरवाना तुम करो भला हम भलो न जानो तुम सदा सदा दयाला तुम करो भला हम भलो न जानो तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख बदात तुम राखो अपने बाला तुम सुखदाई पुरख बदात तुम राखो अपने बाला तुम निदान अटल सुल्तान जी जन सब जाचे तुम निदान अटल सुल्तान जी जन सब जाचे कौ नानक हम हे हवाला राख संतन के पाछे कौ नानक हम हेर वाला राख संतन के पाछे चाचरी शन गोविंदे मकंदे उदार अपार हरि करि नाम में अका गोविंदे मकंदे उदार अपार हरि अंकार नाम में अकाम टाडी दर प्रमंग दर कदे न छोड़े ढाडी दर प्रमंगना दर कदे न छोड़े मन लत्ता गोबिंद संग सच भोजन जोड़ मन लत्ता गोबिंद संग भोजन जोड़ प्रीत लगी हर स्यों ए हस्ती कोट प्रीत लगी हर नाम ए हस्ती कोट राज मिल खुशियां कणी ढाए मुख न मोड़ राज मिल खुशियां कणी ढाए मुख न मोड़ ढाडी दर प्रमंगना अंदर कदे न छोड़ ढाडी दर प्रमंगना अंदर कदे न छोड़ धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव सा तू ही निरंकार तू सदा सलामत निरंकार तू ठाकुर उच भगवान नानक की प्राबेन अपनी भगती लाए धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव सा तू ही निरंकार तू सदा सलामत निरंकार तू ठाकुर उच भगवान नानक की प्राबेन अपनी भगती लाए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज कोट कोट प्रणाम पुलचक भाव त्रिचंड कमला भाव बहुत बहुत धनबाद नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे स्वादा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल।

शर्म करह तह वैर विरोधी अंत कहल जय कह कह जलो कुरोधी दास ऋण सोई हुआ जिस मस्त है कर्म कहो नानक बंधन छूटे सतगुर की शरण बलावन महला पंजवा पिंगल पर्वत पर गीता कुंभ त्रैपन सूचिया गुर भेट पनीता महमा साधु संके सुनह मेरे मीता मैल खोई कोट अंग हरे निर्मल भय जीता रहा ऐसी ही बात गोबिंद कीट हास्ती जीता जो जो कीनो अपनो तैसी अभिह दान जीता संग बुलाई होए वे त्रह मेर नीता सारम काटे दम आंड को तै गुणी तनीता कवन बड़ा ही कह सकूं बे अंत गुणीता है।

सेव रहा। भक्त जिन्हों की बेनती सुनी प्रभु आप, रोग मटा ज्वालियन जा कह बंड प्रताप, दुख हमार है बख्शन अपनी कल धारी, मन बात फल दित्यन नानक बलिहारी, राग बलावल महला पंजवा, दो पले घर सेवा, एक ओंकार सतो प्रसाद, मेरे मोहन स्वरनी इना सुनावे, साकत गीत नाद तुन गावत, बोल बोल अजाय रहा। सेवत सेव सेव सत सेव सदा करो करता है, अभे दान पावो पुरख दाते है, मिल संगत हर गुण गाय, रसना गहा गहा गुण राती, नैन दर्श रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख पंजन, मोह चरण हृदय बुझाए, सब हूं तले तले सब ऊपर, एह दृष्ट दुष्टाई, अभिमान खोए खोए खोहे खोई, मोको सतगुर मंत सुड़ाए, अतल अतल तल नह तोलिए, भक्त बसल कर पाए, जो जो शरण पर हो गुरु नानक, अवेदान सुख पाए, बिलावल महला पंजवा, प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है, नाम छपा डंडो हंद वंदना, अनक वार जाऊं वारे रहा, उठ तो बैठ तो सोबत जागत, ए मन तुझे चितारे, सुख दुख इस मन की व्यर्था, तुझ ही आगे सारे, तू मेरी ओट वल बुध धन, तुम ही तुम है मेरे पर बारे, जो तुम करो सोई पल हमरे, पेख नानक सुख चरण मारे, बिलावल महला पंजवा, सुनियत प्रभ तो सगल उदारण, मोह मगन पतित संग प्राणी, ऐसो मने बसारन रहो, सच बिख्या लै ग्रह जकीनी, अमर तुम तैरन, काम क्रोध लोभ रत निंदा, सत संतोख बोधारण, इन ते काढ लियो मेरे स्वामी, हर परे तुम सारन, नानक के बेनतियां प्रापै, सब संग रखतारन, बिलावल महला पंजवा, संतन कै सुनियत प्रभ की बात, कथा कीर्तन आनंद मगल, तन पूरही जन सदा रात रहा, कर कृपा।

न तुटै छोरी न छुटै ऐसी हिमा दो खिच तनी दैन सरैण मन वह बत है तू कर कृपा प्रभु अपने वल वल जाऊ श्याम सुंदर कौ अकथ कथा जा की बात सुनी जय नानक दास नु दास कही अतै मोय करो कृपा ठाकर अपनी बलावल महला पंजवां हर के चरण जप जप परवान रह गौर मेरा पर परमेश्वर ता कर दे हर मन ध्यान रह सिमर सिमर सिमर सुखदाता जा का पिया सगल जहान रसना रवो एक नारायण सच्ची दरगाह बाब हुमान साधु संग प्राप्त जा को तन ही पाया एह अनुदान गाह गावो गुण कीर्तन रत स्वामी कर कृपा नानक दीजे दान बलावल महला पंजवां राख लिहे सतगुरु की सरन जय जयकार हुआ जग अंतर पार ब्रह्म मेरो तारन तारन रह विशंबर पूर्ण सुख दाता सगल समुखी पोखण परन थान थनांतर सर्व निरंतर वल वल जाई हर के चरण जे जोत बस मेरे स्वामी सर्ब सैद तुम कारण कारण आद जगाद प्रभु रखदाया हर सिमरत नानक नहीं डरन राग बुलावल महला पंजवां लुभदे कर गठवां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मैं नहीं प्रभु सब कुछ तेरा निर्गुण उगे सरगुण केल कर्तव्य स्वामी मेरा रह नगर मैं आप बाहर पन आपन प्रभ मेरे को सगल बसेरा आपे ही राजन आपे ही राया कहो कहो ठा

0: नदरिया ब्रह्म पर सैया राम नाम है ज्योत सवाही गुरमुख गापे अलख लखैया नानक दीन दयाल पय है भगत पय हर नाम समैया बलावल महला चौथा हर हर नाम शीतल जल त्याव हर चंदन वास सुगंध गदैया मिल सत्संगत परम पंथ पाया मैं अरण्य पारस संग हर भैया जप जगनाथ जगदीश सैया सरन पर है सोही जन उभरै ज्यो प्रहलाद उदार समैया राम पार अठारह मैं चंदन उद्दम चंदन निकट सब चंदन होइया साकत कूड़े ऊब सुख हुए मन बमान बिछड़ दूर गईया हर गत मत करता आपे जान सब विद हर है आप मुनैया जिस ससुर पेटे सो कंचन हो बह जो तुर लिखिया सो मिटे ना मिटैया रत्न पदार्थ गुरमुख तो पाहे सागर भगत भंडार खुलैया गुरचरणी एक सरला उपजी मैं हर गुण कहते त्रिपत न पैया परम बराग नित नित हर त्याप है मैं हर गुण कहते पावनी कैया बार बार खिन खिन पल कैये हर पार न पवे परे परैया शास्त्र भेड़ पुराण बकार है धर्म करो खट करम रुड़ैया मनमुख बखंड परम भगुत लोभ लहर नाभ पार उड़ैया नाम जप नाम गत पाप सिमरत शास्त्र नाम दृढ़ैया होमे जाए त निर्मल हो बहे गुरमुख परचे परम पंद पैया ए जग वर्ण रूप सब तेरा जित लावे से कर्म कमैया नानक जंत बुझाहे बजे जित पावे तित रह चलैया बलावल महला चौथा गुरम है गम है गोचर त्याया हाँ बल बल सतगुरु सत पुर भैया राम नाम मेरे प्राण बसाहे सतगुरु परस हर नाम समैया जानकी टेक हर नाम टकाशी सतगुर की तागा जब गुर कृपा ते हर अंदर लैया रहा यह शरीर कर्म की धरती गुरमुख मत मत तत् कढ़ैया लाल जवेहर नाम प्रगासिया भांडे पौ पह तैया दर्शन दास दास होइये जोजन राम भगत निज पैया मन बद गर्भ तुर गुर अगे गुर प्रसादी मैं अकाथक थैया मनमुख माया मोह व्यापे ए मन तृष्णा जलत दखैया गुरमत नाम अमृत जल पाया गगन बुझी गुर शब्द बजैया ए मन नाचे सतगुर अगे अनहद शब्द तुन तूर बजैया हर हर गोस्त करे दिन राती राख रख चरण हर ताल हुरैया हर के रंग रत्ता मन गावे रस रसाल रस शब्द रवैया निज कर तार चुगंत निर्मल जन पिया तन ही सुख लैया मन हट कर्म करे अभिमानी जो बारक बालू कर उसरैया आवे लहर समुद्र सागर की खिन मैं पैन पैन टह पैया हर रस सागर हर है आपे हर जग है सब खेल खलैया जो जल तरंग जल जले समय नानक आपे परमैया बलावल महला चौथा सागर परचे मन मुंदरा पाही गुर का शब्द तन भस्म दुड़ैया अमर पैंड पै साधु संग जन मरन दोहू मिट गईया मेरे मन सा संगत मिल रैया कृपा करो मसूदन माधो मैं खिन खिन साधु चरण बखैया रहा तजे ग्रस्त पिया वनवासी एक खैन मनुआ टिके ना टिकैया तावत ताहे तवे तदे करंगा पे हर हर साधु सरन पवैया या पोत छोड़ सुनयासी आसा आस मन बहुत करैया आसा आस करे नहीं बूझे हैं गुर के शब्दन रास सुख लैया उपजी तर्क गुरधम बुआ मन हूं दैत चल चल गवन करैया हूं प्रभु भवन करे बूझे नहीं तृष्णा मिल संग साध दया कर लैया आसन सैद सुखे बहुते रहे मन गावे सैद रिद चेटक चटकैया त्रैपत संतोख मन सांत नहावे मिल साधु त्रैपत हर नाम सिद्ध पैया अंड जेर सेत युज पज हूं सब वर्ण रूप जी जंत पैया साधु सरन परे सोह ब्रै खतरी ब्रह्म सूद बैस चंडाल चंडैया नामा जय दो करीब कबीर त्रिलोचन उपजात रविदास चमार चमैया जो जो मिले साधु जन संगत धन धना जट सैन मिलया हर दईया संत जना की हर पैज रखाही भगत बसल अंगीकार करैया नानक शरण परे जग जीवन हर हर कृपा तार रखैया। बलावन महला चौथा अंतर प्यास उठी प्रभ के हरि सुन गुर बचन मन तीर लगैया। मन के व्यर्था मन ही जाने अवर कह जाने को पीर परैया। राम गण मोहन मोहे मन लिहिया हौ अकल पई विकल पई गुर रखे लोट पोट होए भैया रहा। हो नरखद फिर सब देश दुसंतर मैं प्रभु देखण को बहुत मन चैया। मन तन काट द्योह कर अगे जन हर प्रभु मार्ग पंथ दुखैया। कोई आन आदेश दे प्रभ के राह हृदय यंत्र मन तन मीठ लगैया। मस्तक काठ द्यो चरना तल जो हर प्रभ मेले मेल मलैया। चल चल सखी हम प्रभु पर बुद्ध गुण कामन कर हर प्रभु लैया। भगत बसल हुआ को नाम कहियत है शरण प्रभु तस जगे पैया। खिमा सिंगार करे प्रभु खुशिया मन दीप गुर ज्ञान वलैया। रस रस भोग करे प्रभु मेरा हम तिस अगे ज्यो कट कट पैया। हर हर हर कंठ है बनया मन मोती चूर बड गुण गहैया। हर हर सारदा से दवसाई प्रभु छोड़ न सके बहुत मन पैया। कहे प्रभु अबर अबर कस कीजे सब था सिंगार फोट फड़कैया। क्यों सिंगार मिले मिलन की ताही प्रभु मिलो सुहागन थुक मुक पैया। हम चेरी तू गम कसाही क्या हम करे तेरे बस पैया। दया दीन करो रख ले हो नानक हार गुर शरण सुमैया। बलावन महला चौथा
1: मैं मन तन प्रेम अगम ठाकर का खिन खिन शरदा मन बहुत अठैया। गुर देखे शरदा मन पूरी जो चातरक प्रेम होइया। मेर मिल सकी हर कथा सुनैया। सतगुर दया करे ब्रह्म मेले मैं ते सागे सिर कट कट पैया। रहाओ रो रो मन तनिक मेदन प्राव देखे बे नींद भैया। वैदिक नाटक देख बुलाने मैं हर हृदय मन तन प्रेम भरैया। हाँ खेन पर रह न सको बिन प्रीतम

संत बरानू मेरे बाबा मैं बोरा सावक अलक ज्ञानी मैं बोरा मैं बिगड़ो बिगड़े मत बोरा राहो आप ना बोरा राम क्यों बोरा सतगुर जार गय परम बोरा मैं बिगड़े अपनी मत गोई मेरो परम भूलो मत गोई सो बोरा जो आप जाने ताए को जाने अभी न बाता सो कबू न बाता कह कमीर रामे रंगराता बुलावल ज बन कर जाइए चुन खाइए गंदा जो मुकार न छोटी पापी मनोदा क्यों छोटो कैसे तुरो पाओ जल्द बारी राख राख मेरे मीठ ला जन सर तुम्हारी राह बिके बिके की बाना तजी न जाई अनक जतन कर रागिए फिर फिर लौटाई जरा जीवन है जो बन गया कि यकीन ने कहा ए जी राजन मोल को कौ ढी लगवी का कमीर मैंने बात हुए तू सर व्यापी तुम सम सर नाल मोहे सम सर पापी मिलावल ने टोटा कौली गागर आने ले बद जियो आना बाना कहना सोचे हर हर रसल डियो हमारे कुल कौने राम कहियो जाऊंगी माला लेन मोदे तवते सोना भयो राव सुनो जटानी सुनो अंतरानी आचार्य भयो सात सोत न मुंडे गए ए मुंडिया क्यों ना भयो सरस का एक स्वामी सो गुर नाम जयो संत वर लाल की भैजन रागी हर नाकस नाक बिरयो करके दे पुत्र की जोड़ी गुर को शब्द लियो

त्यागर भक्ति लाया, जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुरपुरे की बेंत मिटाई, गुरप्रसाद औरत कौन गास, अंधकार में भय अवरगास, जिनकिया सौ करते जान्या, गुर कृपा से मुक्त मन मान्या।

बजरे बिन गाय अकेली, पानिया बिन मीन तलबे, ऐसे राम नमा फिर बबरो न मराओ, जैसे गाय का बासा सुटला, थन चौदा माकन कोटला, नाव दियो नारायण पाया, गौरमेंट असा लाग लगाया, जैसे बके इस पर नारी, ऐसे नामे प्रिय प्यारी, जैसे दावते निर्मल कामा, तैसे राम नामा बिन बापरो नामा।

माया जल काई पानी कर बाद्या। सात के आसन वर्ग रहे कहते नामा तन जान्या तुम सर नाही और रहे। ऊंचा नहीं कहना मन में रहना आपे जाने जावासा देसा तभी क्यों कर एक कहे।

0: सिमरन उदय भुज
1: सबके सिमरन तृष्णा भुज
0: सबके सिमरन सबके सुज
1: सबके सिमरन नाही जम त्रासा
0: सबके सिमरन पूरन आसा
1: सबके सिमरन मन की मल जाए
0: अमृत नाम निध माए समाए
1: सब जी बसे साध की रसना
0: नानक जानका दासन दसना
1: सबको सिमरे से तनवंते
0: सबको सिमरे से पतवंते
1: सबको सिमरे से जन प्रवान
0: सबको सिमरे से पुरख प्रदान
1: सबको सिमरे से बेमोहताज
0: सबको सिमरे से सर्व के राजे
1: सबको सिमरे से सुखवासी
0: सबको सिमरे सदा विनाशी
1: सिमरन ते लागे जिन आप दे अल्लाह
0: नानक जानकी मगेर वाला
1: हर बिन
0: प्रभु सिमरे से पर उपकारी
2: प्रभु सिमरे से सद बलहारी
1: प्रभु सिमरे से मुख सुहावे
0: प्रभु सिमरे तिन सुख बिहावे।

0: पर ब्रह्म लहंते
1: गुण दर्शन प्रप्यास
0: इनको मिलियो प्राप्त विलास
1: गुण मांगे सत्संग
0: पार ब्रह्म ते लगा रंग
1: इनको हुए आप सो प्रसन्न
0: नानक ते जन सदा तन तन
1: गुण खानी रखानी।

0: सोई करे।
1: अन जानत बिख्या मै रचे,
0: जे जानत अपने आप बचे।
1: परमे भूला दे दिसतावे,
0: जिन कमाई चार कुंड के आवे।
1: कर कृपा जिसे अपनी भक्त दे,
0: नानक मेजा नाम मिले।
1: खिन में नीच कीट को राज,
0: पार ब्रह्म गरीब निवाज।
1: जाका दृष्ट कछु न आवे, जाको अपनी करे बख्शीश।
0: ताका लेखा ना करे जगदीश,
1: जियो पिंड साव तिसकी रास।

0: दुख विसारण।
1: आपे मिले कृपाल
0: गुर का शब्द पै निहाल।
1: की सेवा सोई लागे
0: जिसनो कृपा करे वड़ पागे।
1: नाम जब्द पावे विश्राम
0: नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान।
1: जो किछु करे सो प्रभु कहे।